बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
2: हैं? हॉस्टल गाना पूछ रही।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: दाल नहीं
3: कितना सुना रहे आपसे सर में।
4: Hello?
5: Who's this?
4: Yo, it's me, Dilber.
5: Where you guys at?
4: We don't know when.
5: Yeah, come on.
4: The party already started. Where you guys at? Aajo shetti karo, yaar. Come on.
6: Let's go. Yo, party guru. Get up. Yo, Pam.
7: Yo, party guru. Let's go. Get up, bro.
8: Another one?
7: Yeah, get up. Let's go.

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आशा सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तेरी आई में मर जावा जिंदगी।

उसकी किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: All right, Bot Shop for you, Bangkok!
1: पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: सलमान।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: पंजाबी सिटी।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: सुन लेना है जाने वैसे।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आप।
5: दोस्तों, वक्त हो चुका है 11:38 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30°C। दोस्तों, हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू हो चुकी है। आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वो नहीं हो जो मुझे लेने आने वाले थे?
1: मैं तुम्हें बताने ही वाला था।
0: हेलो, हाँ जी अंकल जी, हाँ जी वो मुझे मेरे फ्रेंड ने पिक कर लिया था, तो मैं दो तीन दिन उसी के साथ रहूंगी। हाँ जी
2: सुन ले

0: हेलो, हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तो
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा?
1: मैं साउथ से आया, किसी को साथ ना लाया, रोहतक पर जब मैंने अपना कब्जा जमाया और दोनों चूहों पर अपना जाल बिछाया।

0: क्या है आपका?
1: आर्यन मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरी जगह शराब ने ले ली।
0: ओके, सुना रहे हैं।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम बनवारी है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं गंगापुर से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहो?
0: चम्बल घाटी मार बसिए।
1: चल गई चम्बल घाटी वाला, कोई और बताइए।
0: और कौन सा बताऊँ? चले धुरंधर का गाना चला।

0: सारेगामा कारवां द परफेक्ट गिफ्ट
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: ये सब साइन।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला
5: तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, गाना चला तो, गाना

0: गाना बजा दूं।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: अर्जुन मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुरम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाने
1: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: मदद करने के बजाय आप हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हैं।
1: देखिए 20 दिन से हम आपकी मदद ही कर रहे हैं, हम आपको जानते भी नहीं हैं और ना ही आप हमें अपने बारे में कुछ बता रही हैं। यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अपने घर, ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।
0: मैं आपके घर तक आपके साथ चलूं, उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: कि यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: नशीले जज्बात है उस पे तेरा साथ है, सिर्फ तेरे ही लिए मेरी चाहत की सौगात है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाई, सब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकती।

0: से एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए
1: दोस्तों, वक्त हो चुका है 2:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून का 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बोली विसरी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं DS साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। DS में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर

दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: अंधेरे को अंधेरा नहीं,
1: सुनते रहिए दिल से रोशनी मिटा सकते 89.6 DSFM पे।
0: नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है।

0: राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.9।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बन।
4: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:01 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम राजस्थानी। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद कर हेलो फरमाई 89.6 रेडियो डीएस पर।
2: नमस्ते सर।
3: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: हल्दीराम गुजर बोल रहा हूँ सर।
3: सर कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गाँव गुजरिया से बोल रहा हूँ।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाने के बोल है चांदी गाने मेरी काल।
3: कौन सा सर?
2: तेरा मेरा तेरा मेरा दिल मिल गया बोल दे मैं।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: और नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: थोड़ा रेशम लगता है।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: वेलकम सर।

0: परम आदरणीय पलक गिरी, सादर सा प्रेम प्यार भर नमस्कार।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: जी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल, किशोर कुमार साहब ने गीत गाया है। हाँ। पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आप।

0: सर नमस्ते।
1: जी नमस्ते।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: नाम सागर है, दशहरा मैदान से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी सर, तुमसे गाना सुनना चाहोगे?
1: न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: चौधरी बोल रहे हैं, माधव जी से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना तो दीदी रेडियो डीएस के लिए सेपरेट लाए हैं।
0: हाँ जी बताइए।
1: लिखो।
0: हाँ जी।
1: बाजरे के खेत में।
0: बाजरे के खेत में।
1: जी जी
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के

0: हाँ जी मैम, क्या आपका कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कमल दीजिए सर।
0: ओके मैम, सुना रहे आपकी सरप्राइज। कतल के हो

दोस्तों वक्त हो चुका है 5:01 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरवाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं, मरते दम तक रहेगा सिर्फ आज नहीं।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: स्टाइल का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: नया मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: हाँ जी मैम।
1: ओए छोटू की कह रहे थी तू ऑस्ट्रेलिया चला गया?
0: थोड़ी होने वाली नू नू मिलना आया सी। आ जाऊंगा परसों।
1: बेटा तेनु पता तो है अपने इथे ब्याह तो पहले मिलना ठीक नहीं।
0: चंगा संताली वाले हो, कहता रहा कि आ जाऊंगा मिलके।
1: हाँ
0: जी मां पहुंच गया।
1: चल जल्दी आ जाऊं घरे।
0: आ जाऊंगा परसों। चंगा।

ते तेरी जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा, अज तो बाद तेनू कदे चेहरा दिखना नहीं मेरा। मैं इश्क कीता सी ते तू वपार कीता सी, गलती तेरी नहीं, गलती ता मेरी सी, क्योंकि तू नहीं मैं तेनू प्यार कीता सी।

0: पर असी गुस्से हाँ तेरे नाल। बड़ा बंदा हो गया तू, सानू एक्टर नहीं लवेंगा आपकी फिल्म च?
1: वाह, तुसी तो बहुत वधिया एक्टिंग करते हो।

0: out of here.
1: मैं आया था छत्तीसगढ़ मेन पार्ट एक गाना शूट करने के लिए, और गाने का नाम है हाय।

मुहब्बत जो सच हो गई ना उदो बेवफाई सब तो ज्यादा दर्द दिंदी है ते कुछ जख्म कब्रां तक नाल जांदे ने।

बदलते ने वक्त सब कुछ बदल देता है, पर कुछ लोग सारी जिंदगी सिर्फ एक नाम बन के रह जाते हैं।

0: हाँ जी, किवें लगे तुहानू इह गाणा? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे डेब्यू ट्रैक विदाउट यू नू वी जरूर सुनियो ते मेरे नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एम पी थ्री चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

0: मेरे लिए?
1: हाँ, चल अखा बंद कर। ए, मैं दूसरी औरत दे अपनी जिंदगी चलाया।
0: दूसरी?
1: हाँ।
0: ते पहली कौन सी?
1: मेरी बेबे।

0: लेंगे मैनू बोल दे नहीं ड्राइवर तो रख ला यार तेन खुश रखूगा मैं बहुत ज्यादा खुशी होगी पर जो तेन दुखी रखूगा मैं होर भी ज्यादा खुशी होगी
1: तेरे नाल प्यार हाय मर दे दम तक

0: यार ये सिंगर तो बढ़िया, आजकल गायब पता नहीं कित हो गया।
1: गायब तो कहीं नहीं हुआ है बेटा, पर बस इसे लोग पहचानते नहीं।
0: अरे पागल, अरे साले, चल रे छोड़ यार, क्या छोड़ छोड़ छोड़, मार मत देगा कुत्ते ने, जा भाई।
1: ये
2: फटाफट रेडी करो यार, लेट हो रहे हैं। लाइट रेडी करो यार, क्या हो रहा है यार।

तेरे बिना मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी थी, उसका मैं आज आखिरी पन्ना लिख रही हूँ। अलविदा।